जसले पाथा नेपाल सम्बक्षिन छ सो पी खुद यन लागा खस्टी थोरै डे नेपाल खा अनि नदीस जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार। सरकार संघीय निजामती सेवा विधेयक 2083 संघीय संसद सचिवालय दर्ता यागुदु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल विधेयक संसदले दर्ता यान दिगुख थोय असोज 13 गते मन्त्री परिषद बैठकमा संघीय निजामती सेवा नापाया कानून संशोधन एकीकरण यायता दिएको विधेयक संघीय संसद दथी द्रुत वित्त स्वीकृति ल लागू ख सरकार संघीय संघीय शासन प्रणाली तथा संघ प्रदेश स्थानीय तहदतीय प्रशासनिक स्वापु कार्यक्षेत्र सहकार्य यता व्यवस्थित थ्वाथैको कथा लिचो लाकुसे प्रशासनिक संयन्त्र यता राजनीति प्रभावसँग मुक्त याना निजामती सेवा यता व्यावसायिक सक्षम उत्तरदायी व जनमुखी देखे त विधेयक हे मागु थ्वाथ्विका दिल। मन्त्री रावल प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक निजामती सेवा या कार्य सम्पादन जवाबदेहितासँग आमूल परिवर्तन हे गु भलसा कागु दोष सामाजिक सञ्जाल पाखे मिग वैक्ल आप्ला अध्ययन व सल लिपा विधेयक लिपाङ्गु खा पा बिगु विधेयक निजामती सेवा या त अझ सेला किकु लिचो लाकिगु दक्ष उत्तरदायी व लिचो पिकाइपी जनशक्ति देखिगु धेया दिला नापा वैकल संघीय शासन प्रणाली या त लिचो लाकिगु कथा छेलावला या त महत जागु लिदंसा ल लागु नापा सुशासन व सार्वजनिक प्रशासन भिङ्किएको लपी विधेयक महतन जाइगु दोस्रो जुइगु भलसा फङ्का दिगु दु। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मन्त्री परिषदीय सिफारिसे मिग चाने सिया चिन्ने त इलनिसिन छेलिगु याना संघीय संसद नेहनासङ्गको अधिवेशन हङ्का दिगुदु। राष्ट्रपति कार्यालय प्रवक्ता कृष्ण बहादुर साही मिग पिथना दिगु राष्ट्रपति पौडेल नेपाल संविधान कथ मन्त्री परिषदीय सिफारिसे मिग शुक्रबार चाने सिया चिन्ने त ठिकेता अनन्तको निर्णय दिशा मन्त्री परिषद सिफारिस कथा थौ शुक्रबार चानेसिया चिनिता इलनिसे संघीय संसद निको अधिवेशन नङ्केगु जानकारी बियादिगु ख थौ जुइमाथा मेगो जुवङगुली पिङ्का प्रतिनिधि सभाया मिगेया बैठक अतिथि सोङ्गु विधेयक दफावार सहलाई नीति स्वापुदुगु समिति छेमा थैगु प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकृति ल लागू दु। बैठकले अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले नियोबयादिगु कर्मचारी सञ्चय कोष सिकगु संशोधन विधेयक 2083 नागरिक लगानी कोष सोकगु संशोधन विधेयक 2083 व भुक्तानी तथा फर्चे थापाङको संशोधन विधेयक 2083 यता दफावार सहलाई नीति स्वापुदुगु समिति छेमा थैगु प्रस्ताव सभाया सर्वसम्मति स्वीकृति ल लागू अध्ययन बैठकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति हरि ढकाल संवैधानिक निकाय पदाधिकारी तेगु पारिश्रमिक सेवाया शर्त व सुविधा नापाया नापाङको संशोधन विधेयक नापाया समिति प्रतिवेदन 2083 दुतबिया दिगुदु। बैठकमा प्रतिनिधि सभाया पूर्व सदस्य घनेन्द्र बस्नेत ने पेदया बैंसे मधुगु लिताकया शोक प्रस्ताव नपारी त्यागुदु छ। थ्यानीय प्रतिनिधि सभाया मिगया बैठकले विशेष यी कया प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे सरकार सेनलागु जनादेश कासाना शासन सञ्चालन नेता स कमजोर खनेदुगु थ्यादिल। अध्ययन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र अध्ययन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली देया हाथ्यासन तथङ्गु क्षति फेमालाचङ्गु कना दिसे प्रतिपक्ष व सत्ता पक्ष दति समन्वय यासेन हेजा मागुली बबिया दिलासा उपनेता पराजुली जोखिममा जागु लाग्या मनुतेगु जीवन माकिगु विपद्या हुने लिचो लापी छेजया त इलेहे मागु ग्वाली ठेङ्केगु पुननिर्माण ज्याखे सरकार नापा सकल छपा जुई मागु धया दिलासा श्रम संस्कृति पार्टी प्रमुख सचेतक आर्यन राय सीमा सुरक्षा ढिसी लाकेगु ठिके जुया चङ्गु हलन जोलन नियन्त्रण हाकुगु बजा अलपत्र लाना चौपी मनु तेता ग्वालिया मागु खे बबिया दिगु दुसा अथियान राष्ट्र सभा मिगया बैठकमा भोटे कोशी तथा काली गण्डकी करिडोरे जुगु विपद्या जोखिम क्षति पुनस्थापन अध्ययन यासेन दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण या मार्गचित्र सिफारिस या त गुमदुजा विशेष समिति निसोङ्गुदु। बैठकले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल भोटे कोशी व काली गण्डकी कोरिडोर विपद नापाया अध्ययन व अनुगमन संसदीय विशेष समिति निशुनेगु नीति यानादिगु प्रस्ताव सभा सहमति ल लागू ख राष्ट्रिय सभा या बैठक थौ छता इजुया झिङ्यागु मिनेटे चुनी धासा प्रतिनिधि सभाया बैठक थौ सुते झिन छता इले चुनीगु गोसादु।
संघीय संसद निगु सदनीय बैठक ठाउँ चुनिगु जुगुदु सुथेसिया झिन छता इलेसी अन्तर्वारी चुनिगु प्रतिनिधि सभा या बैठक न्यावे मफुको मौखिको लिखित न्यासा लिस नापा स्वापु दुगु मन्त्री त्यसा टेबल याइगु ज्याथल दुसा अथ्याना राष्ट्रिय सभा बैठक निनेसिया छता जुया चिङ्याको मिनेटे चुने चेङ्गु दु थौया बैठके सभा न्यावे मफुको मौखिको चुगु न्यासा लिस त स्वापु दुपी मन्त्री त्यस लिस बिगु ज्यासो दु मिग मनाङ्या हिमलुङ हिमाले हिम चल वोबले सिपिनी गुल्या झिङ्यामा ठेङ्गु दु मिग मेपि च्यामा मनुया सिमल लुया वो गु वो सिपिनी गुल्या झिङ्यामा ठेङ्गु ख खोज तथा उद्धारे खटे जुगु नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण तथा पर्वतारोहण गाइड संज्ञा पुच स मिग च्यामा स्या सिमल लुइक गु ख उमेगु मसिका थ्वाथिके फया चङ्गु मधु अन अझन क्षमा मनो तना चङ्गु पर्वतारोहण तथा गाइडसँग जानकारी बिगुदु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपाल निर्वाचन आयोग या प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की आयोग या न्यानाचङ्गु आर्थिक दह 2082/83 अध्यक्ष प्रतिवेदन दुत ब्यादिगुदु राष्ट्रपति कार्यालय मिग गोसागोको ज्यासोले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की नेपाल संविधान या कथ आयोग अध्यक्ष प्रतिवेदन दुत ब्यादिगु राष्ट्रपति कार्यालय प्रवक्ता कृष्ण बहादुर शाही जारियाना दिगु विज्ञप्तिसँगु रसुवा खुसी पाया हुने सेना चङ्गु गल्छी बेत्रावती सडक खण्डे ट्र्याक चाकी गुजिया फुङ्गुदु ट्र्याक चाले व अन या सडक खण्डे सर्वसाधारण वे भने त अपुगुदु रसुवा नापा स्वाईको मुख्य सडक लपिया कथन दुगु थो सडक खण्डे ट्र्याक चाके धुङ्खानी ग्रेट मिले यागु ग्राभेल ते गुजिया धासा ल्याउदनी शरद ऋतु नेपा या थि हिमाल आरोहण या नीति खुई गुगु दे या खुस व पिचामा आरोही अनुमति कागुदु पर्यटन विभाग बिगु जानकारी कथ सन् 2026 या शरद ऋतु स नेपा या निगु हिमाल गेगु नीति खुई गुगु दे या खुस व पिचामा आरोही अनुमति कागु ख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेपाले आवोगु खुसीबा चल लिपा अस्ट्रेलिया सरकार कियङ्गु पासा या व्यवहार वा एकबद्धता ग्वालिया नीति लसाना देशना दिगुदु नेपाल नीति अस्ट्रेलिया या राजु साइमन अल अन्ट्रस अनिष्ट सिंहदरबारे प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालय हिग नाप्लाना दिगु ख नाप्ला ज्यासोले प्रधानमन्त्री खुसी पाओ चलाया हुने त धङ्गु झन्दने क्षति जुगु नेथना दिशा नेपाल सरकार खोज उद्धारो राहत पुनस्थापना नीति ल लागु फुक्क स्रोत्सारण छेलाचोनागु जानकारी ब्यादिल सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा दूरसञ्चार सेवा या गुणस्तरीय अवस्था विशेषण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नापा जानकारी फोनादिगुदु टेलिफोन वा इन्टरनेट सेवा या गुणस्तर कमजोर जुगु विशेष उपभोक्ता या ख म मजुगु नेथना दिशे संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा मिग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण या पदाधिकारी नापा सेवा या अवस्था गुणस्तर परीक्षण नियमन वा सेवा विस्तार या विशेषण जानकारी कयादिगु ख अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नापी कार्यालय कलङ्की ये या सर्वेक्षक सुविन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध पदीय मर्यादा अख ज्यायाना गैर कानुनी कथन सम्पत्ति मुङ्कगु दोपसम विशेष अदालत ये मुद्दा दारी आगुदु आयोग श्रेष्ठ गैर कानुनी कथ मुङ्कगु सम्पत्ति वेक या कला कमला श्रेष्ठ नामे तगु दाबी यासे पेङ्गु करोड ने पेङ्गु लाख पी खुदो शिवे उपढिवा बिगो कायम्याना मुद्दा दारी आगुदु आयोग श्रेष्ठ यता भ्रष्टाचार निवारण एन कथ सजा कायम यानागु बिगो कथन जरिवाना वा गैर कानुनी कथन मुङ्कगु सम्पत्ति नापा वेकया कलाया नामे दुगु गैर कानुनी कथन मुङ्कगु सम्पत्ति जफत या यता माग दाबी नापा कागुदु मनाङे अलपत्र लानाचोम्पी झिङखुमा इन्डोनेसियाले पर्यटक त्यता हिग हेलिकप्टर पाखे लमजुङ हगुदु उमिता मनाङ्या निस्याङ गाउँपालिका एक ताङ एग्रो लागासन लमजुङ्या बेसी सहर नगरपालिका साथ सहजी सहगु अपुक हगु जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङ्या प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्र बहादुर बस्नेत ध्याय दिल अन्नपूर्ण पद मार्गके ट्रेकिङ या नीति उमपी उमिता असोज 8 गते निसे 11 गते तक मडिको वोगु वाया हुने थ्या थासे चलाउने धुङ्कानी कताङ एग्रो लागा अलपत्र लाना चङ्गु ख
नेपाली कंग्रेस संस्थापन इतर समय झिङ्याका गुमा अधिवेशन कथा डिएनएङ सोदो सचिव गुई छगु ओडा अधिवेशन फुङगुदु कंग्रेस संस्थापन इतर समय केन्द्रीय निर्वाचन समिति कथा मिगजुगु ओडा अधिवेशन डिएनएङ खुदो नेस पी सोङ्गु ओडा मध्ये सोदो सचिव गुई छगु ओडा अधिवेशन फुङगु ख कंग्रेस संस्थापन इतर समय झिङ्याको अधिवेशन वैगु मङ्सिर 21 गते तक जुइगु कोछिना तगुदु सिंह दरबार वैद्यखाना विकास समितिसँग जुइगु वासा उत्पादन उपयोग्यता कच्चा पदार्थ नीति मागु जडीबुटी या त बल्ला के त मुङके त संरक्षण प्रशोधन वा उपभोग्य विशेष कार्ययोजना देखेता कार्यदल निशोनीको कोसिगुदु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मिगो चोङगु जडीबुटी या सेना केगु मुङकेगु संरक्षण प्रशोधन उपभोग विशेषण सल व समाधान लिपा समिति कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रदीप केसिया समेत जगते विज्ञपुच दुथ्याको कार्यदल निशुनिगु कोचिगु ख हुम्लाया उत्तरी सीमा नाया हिल्सा मडिक वोग वास चफु कुहा वो बोले पी छमा नेपाली पी अलपत्र जुया चङ्गुदु हिल्सा ताक्लाकोट वे वनिगु मनुतेता हाठिया जुया चोङ्गु इमित उमिसा हिल्सा सहे दिना चोङ्गु अध्यागमन अधिकृत विमल पौडेललाई जानकारी बिहा दिल वैकया कथा अलपत्र लाइपी नाम्खा गाउँपालिका 1-2-3 या मनुत खसा उपीमध्ये यो कोथेन तक्ला कोटे व्यापार व्यवसाय याना वया चौपी ख वङ्गु शुक्रबार हिल्सा थेम्पी उमिता चपु कुहा वे धुङकानी नाका सन्धिका तगु वेकलाई जानकारी बिहा दिल स्वाल ट्रेनिङ कर्पोरेसन शाखा कार्यालय जुम्ला छगु दो पी गुगु क्विन्टल ची मोजा दु मोहनी सोन्टी नखा या इले ची या मो मोजुमा धका माको मौजा तया तयागु साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन शाखा कार्यालय जुम्लाया प्रमुख मुनि दत्त बुढा जानकारी ब्यादिगु ख आदेशम्पिने अबुख इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्गोजाम फ्लै दुबैया न्यामा मनुतेत वीरता शिर्पा लल ह्यागु घोषणा याना दिगुदु मिमान झाका याकेत कुत याना फ्लाइ दुबैया सहचालक या त चक्कु खापा यागुनी थो शिर्पा बिगु धागु ख थुके भारतीय स्मिथ मच्छा या त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इजरायली राष्ट्रपति हर्गोज लसहना देशना दिगुदु इजरायली अधिकारी तेगु कथ सह पाइलट चक्कु घापा या धुङकानी विमान चालक मच्छा ककपिट या खापा चाका यात्रु व चालक दल या दुज तेत सुचौ व ग्वालीसँग आक्रमणकारी तेत नियन्त्रण क्याता विमान सुथन लागु थागुदु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इराकसँग अमेरिकी सेना लित जुगु घोषणा याना दिगुदु राष्ट्रपति ट्रम्प इराक इस्लामिक स्टेट आइएसआइएस विरुद्ध सैन्य अभियान फोङकगु दाबी यास इराकसँग अमेरिकी सेना लित जुगु घोषणा याना दिगु ख मौसमीय जानकारी थौं लुम्बिनी कर्णाली व सुदूर पश्चिम प्रदेश हिमाली व पहाडी लागा व देया तराई लागा सुप्या भुनिगु जुगुदु कोशी बागमती प्रदेश हिमाली व पहाडी लागाया मोथासे व गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली व सुदूर पश्चिम प्रदेश पहाडी लागाया छगुनिगु थासे भतिचा वा अवैगु धुकमादु वङ्गु निपे गौसा ये सोनिगया क्वाज निगुगु फुटी च्यागु डिग्री सेल्सियस तथी सोना धासा थौ सुथे ये सोनिगया क्वाज निचे नि च्यागु निसे सुईगु डिग्री सेल्सियस तथी लुइगु धुकमादु थौ सुथे ये सोनिगले न्याता इजुया नेगु मिनेटे लुगु निभा सनिल न्याता इजुया निए पेङ्गु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन छिताईले नेपाली भाषा या समाचार नेना दिशा शुभ

सुरक्षा अनुगमन लातोबा थाङबा ताम कादेरी सरकारला ध्यान छेङनाला सियुबामुला सांसद कादेसे बर्खाला धुइरी ग्यागारला सानम बोन कादेसे नाबन खाबा ब्लुम्बा समस्या दा छाङना लाबारी पुरान टाटाबन्द कादे सोदोबा जामे कोला कादे थोरी ताबा योन हिंसा काबारी जाजाबा दुई हेन्चेन नैतिक स्यार पिन्दोबा निजामती विदेग्री थान्बा या काबा धुइरी विदा पिनबारी सरकार दा मोइजेन लाबा मुला चुराङलासिन सरकार से ब्योन लोबोन दा बिसी बाबा पढ्दै कमाउँदै गेखोर्दा प्रभावकारी सोबारी खामदोला बिसी सुङबान सांसद कादेसे सरकारसे दुई तोक लातोबा तामला छ्याम्री विकास निर्माणला योजना सार्वजनिक लातोबा राङबा ताम कादेरी सरकारला ध्यान छेङनाला सियुबा मुबा तिनीला प्रतिनिधि सभाला चिसाङरी विशेष दुई ऋषि लेङ्मो थान्च्युबान रोङसा ब्लोन शिशिर खनालसे संयुक्त राष्ट्र संघला ब्रेचुई गिक्चा वाल्डी पो किनबारी काइब्लोन बालेन्द्र सहला गोबाङरी मुबा टोलीसे लोलो लोलो ब्रेचुई गेखोरला छ्याम निपक्षीय बहुपक्षीय ग्रेन स्तरीय रूपतासी लेङ्मो ताबा मुबा बिसी सदन डी सुङबा मुबा रोङसा ब्लोन खनालसे नेपालला रोङसा ठिम्थेन युलबाङ हिद्दा गोसी मोकोन ग्रेन स्तरीय ह्वाल चिसाङ गेखोर कादेथेन लोलो लोलो निपक्ष काठुरी भोटे कोसिरी खाबा भाल लिचा जामुलिङ थेत्मासे लाबा रोदा थुजेछे पाङबान नेपाल थेन नेपाली मिनी ह्वाना ग्याम्नोन थुजेछे पाङबा बोलाबिसी सुङबा मुबा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ठिम्दा संशोधन थिएन एकीकरण लबारी शोभा विदेग्री जामे कोला कर्मचारीदा या काबा धुइरी पिन्बा विदा ला छार ठिम अनुसार प्रस्ताव लाबा मुला निजामती सेवारी मुभा कर्मचारीदा लोलो लोलो छार ठिम प्रस्ताव लाबा होजा विदेग्री तिलमा संघीय संसदरी धर्ता लाबा मुभा चुङाछा निजामती जामे कोला कर्मचारी से गोर्ब्रे प्रकारला विदा याङबन खाबारी चु ठिम प्रस्ताव लाबा छ्याम जामे कोला कादेसे याङबा बिदा कु धोबा मुला राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङरी आन्तरिक वायु सेवा दायित्व सम्बन्धी विधेयक 2083 पारित लाबा मुला चिसाङरी रिमटिम पर्यटन थे नागरिक उड्डयन ब्लोन खड्ग राज पौडेलसे थान्स्युबा विधायन व्यवस्थापन समितिला प्रतिवेदन छ्याम्ला विधेयक काठुई लाबा लिचा पारित ताबा हिला काठुई रिथोनबा प्रश्नला जवाफ फिन्चुबान पर्यटन ब्लोन खड्ग राज पौडेलसे आन्तरिक हवाई सेवादा ज्याबा सोबारी चु विधेयक बाबा हिला बिसी सुङबा मुला चुराङलासिन तिनीला राष्ट्रिय सभा रे प्रतिनिधि सभा ग्याम संशोधन छ्याम याइसी खाबा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना थिएन सेङबा विधेयक 2081 ला ताम्री प्रतिनिधि सभा ग्याम ताबा संशोधन दा सहमति लातोजी विवा प्रस्ताव नन पारित लाबा मुला चुराङलासिन चिसाङरी महालेखा परीक्षक ला डुचुई सोमछा तिदिङ प्रतिवेदन 2083 निर्वाचन आयोग नेपालला नोर्दिङ 2081-82 ला तिदिङ प्रतिवेदन थिएन मुस्लिम आयोग नेपालला नोर्दिङ 2081-82 ला तिदिङ प्रतिवेदन थान बामुला चुराङलासिन चिसाङरी विधायन व्यवस्थापन समितिला चोहो कृष्ण बहादुर रोकाएसे विधान व्यवस्थापन समितिला नोर्दिङ 2082-83 ला तिदिङ प्रतिवेदन थान्स्युबा मुला चुराङलासिन दिम्लोन खाङथेन थुइबा राष्ट्रिय सभारी आथानबा मौखिक थेन ब्रिबा प्रश्नला उत्तर दिम्लोन सुदन गुरुङसे सभारी टेबुल लास्युबा मुबा चुराङलासिन नोर ब्लोन खाङथेन पूर्वाधार विकास ब्लोन खाङथेन थुइबा तसै आथानबा मौखिक थेन ब्रिसिन प्रश्नला उत्तर नन दिम्लोन गुरुङसेन सभारी थान्स्युबा मुबा चुराङलासिन विज्ञान प्रविधि थेन नव प्रवर्धन ब्लोन महावीर पुनसे बाङ विधि विज्ञान प्रयोगशाला दा आधुनिकी सोबारी चु नोर्दिङरी करोड निचुई ला उपकरण ग्लुबारी माइबन मुलाबिसी सुङबा मुबा तिनीला राष्ट्रिय सभाला चिसाङरी प्रतिनिधि सभा ग्याम संशोधन छ्याम याइसी खाबा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक 2081 थोरी थोन्बा प्रश्नला उत्तर धोन्स्युबान ब्लोन पुन्से प्रयोगशाला दा आधुनिक थेन साक्षम सोबारी तोबा सेकादे ग्लुबा तयारी लाबारी माइबन मुलाबिसी सुङबा मुबा चुङाछा चिसाङरी सांसद कादेसे भालसे लामा लोलो लोलो ग्लारी ताबा सडक ग्यालाम भन्द ग्यालाम्रिन रोगदिबा नेपाली छोङबोन्से चिन ग्याम बाबा से कादे बाबारी बङ लाबारी थिएन तसै खाबा गाछन् भाल ग्याम नोङबा सडक ग्यालाम सेङबारी सरकारला ध्यान छेङनाला सियुबा मुबा चुराङलासिन सांसद कादेसे चाँद

अनि दोधाराला झोलङ्गे चाम योनान सोबारी भाल ढुइग्याम प्रभावित मिनिदा क्षतिपूर्ति पिनबारी थिएन रेदाङसे मिनिदा तोबासे कादेरी लेबा टाङ्गा नियन्त्रण लाबारी सरकारला ध्यान छेङना लस्युबा मुबा रोङसा ब्लोन शिशिर खनालसे जलवायु न्यायदा ताम्री जेखेन आथान्ना व्यवहार ऋण सेङ्दोला बिसी सुङबा मुला तिनी याम्बुरी सेङ्बा गेखोरी लेङ्मो थान्सुबान रोङसा ब्लोन खनालसे नेपालला विकास सानाम पूर्वाधार जला जल सुरक्षा संक्रमण वित्तीय स्थायित्व थिएन रोङसा ठिम्नोन जलवायु पोबा थिएन थुइबा मुला बिसी सुङबा मुबा रोङसा ब्लोन खनालसे जलवायु पोबा ताम्री जाम्बुलिङला काठुइरी नेपाललाई गे भूमिका कोङबा सोबारी रोङसा ब्लोन खाङ्री जलवायु कूटनीति शाखा ठोङबा मुला बिसी सुङबा मुला युल्चोहो रामचन्द्र पौडेलदा भाषा आयोगला घे तेन्बा चोहो कृष्ण प्रसाद नेउपानेसे नोर्दिङ 2082-83 तिदिङला प्रतिवेदन थान्स्युबा मुला यो भाषा आयोगला ठिम 2074 अनुसार आयोगसे शोभा दिङ्गिकला प्रतिवेदन घे तेन्बा चोहो नेउपानेसे तिनी युलुचोहो पौडेलदा पिन्स्युबा मुला बिसी युलुचोहोला घेदिम्से पाङबा मुला चुराङलासिन युलचोहो रामचन्द्र पौडेल थिएन सुङबोन डोलप्रसाद अर्यालसे तिनी रूपतासी लेङ्गो लास्युबा मुला युल्चोहो दिमखाङ्री रूपतामा सुङबोन अर्यालसे अन्तर व्यवस्थापिका सङ आइपियुला ग्यार्जा गिक्से गाँची सोमछा ह्वाल्डी पो किनबारी राङ रेङ्गेन निबारी माइबा ताम युलुचोहोदा जानकारी लास्युबा मुबा उद्योग छोङथेन आपूर्ति ब्लोनखाङला लोन रुद्र सिंह तामाङसे सुरक्षा निकायदा नोन कान शोभा ग्यास एलपी ग्यास सुङबारी अनुमति पिनबारी माइबन मुला बिसी सुङबा मुला विकास नोर मामिला थिएन सुशासन समितिसे तिनी सेङबा घेखोरी लोन तामाङसे ह्युल्डी ग्यासला समस्या ताबा धुरी सुरक्षा निकाय ग्याम पिनबा सहज शोभा लासी व्यवस्था ढिक्ना लाबारी माइबन मुला बिसी सुङबा मुबा मोकवानपुरला बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर ढुला ज्यामिर थुम्री ढुई निबारी माइबा लिछा नाम्सा ग्रेन जोखिम रिमराङबा मुला हटिया ब्रे छतिवन मरङ्गे धाफ हेन्चे नि किलोमिटर थुम्री सा फ्रेबा थेन भास्तिबा लेबन निबा लिछा होजा घ्लाला मिनिदा तिलालाई ताबा मुला लाना राङबा तामाङ माझी थिएन बिक थेत्मा चिबा होजा घ्लारी चु असोज चुई घिक्ला कुनु हेन्से चु घटना ताबा हिँला चु समस्या ग्याम गोर चुइडु दिम लाना प्रभावित ताबा मुला जोङ प्रशासन गेजाङ कञ्चनपुर सेतिनी कागिर छिपाना निरा महाकाली गान्धी गाम्री चिबा मिनी कादेदा सतर्कतासी चिबारी मोइजेन लाबा मुला भारतला धारचुलाला धौली गङ्गा जलविद्युत परियोजनाला नाङ्गर हेन्से सोमबार दोना सफाइला गे लाबा ताबासे गे लामा बाँधला म्राफ ठोङदोबासे महाकाली गान्धीरी क्युई लेबारी खाम्बा ताबासे गान्धी गाम्री चिबा मिनी कादेदा सतर्क ताबारी मोइजेन लाबा सर्लाहिला बागमती नगरपालिका सोम धरहराला ओडा चोहो तिलक बहादुर मोक्तान ढोङबा मुला तिङ ह्याम ग्याम आखाम्बा तासियुबा ब्लिचुई निसदिङला मोक्तान तिनी स्योरी याम्बुरी डोङबा हिन्ला बिसी बागमती नगरपालिकाला गे तेन्बा नगर ग्रेनपो कृष्ण कुमार लामासे सुङबा मुला ओडा चोहो मोक्तान मान लाबारी बिसी लागिके हेन्से याम्बुरिन स्युबा मुला स्यान स्युबान मोबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास ठीक विजय झासँग सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। मिथिलाञ्चल सहित तराई मधेसमे मनाएल जायवला जितिया पर्व आइ षष्ठी तिथि सँ विधिवत रूपमे शुरू भेल अछि। ई पर्व व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान के दीर्घायु सुस्वास्थ्य आ संतान प्रति के ममता सँग जोड़ल गेल कठोर व्रत अछि। ई व्रत पूर्व कालेसँ तराई मधेस के महिला सब करैत आयल छथि। आइ पोखरि नदी वा जलाशय में नहाकर विधिवत रूप से झिमिनी के पात पर सिंदूर खड़ी तेल जिमूतवाहन देवता के चढ़ा व्रत के शुरुआत कैल गेल अछि। आ शनि दिन सप्तमी तिथि के दिन निराधार बिना पानी पीने व्रत रहती। व्रतालु दिवंगत दाई अपन साउस लगाए तीन पुस्ता भीतर के नाता में रहल पितृ महिला के तर्पण देवाक चलन सेहो अछि। एहि व्रत के सोड़ा मातृका श्राद्ध सेहो कहल गेल। राजविराज नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के 75 वर्षीय शंभु मिश्र बतौलनि व्रत के दोसर दिन साँझ व्रतालु महिला विभिन्न प्रकार के परिकार खाना दही मिठाई माछ मरुआ के रोटी अनिवार्य रूप में खेबाक चलन अछि। दोसर दिन भिनसर 3 बजे सँ 4 बजे व्रतालु आंगन में झिमिनी के पात पर पितृ तथा जिमूतवाहन के दही चूड़ा चीनी केरा मिठाई पान सुपारी चढ़ाबै छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संग सभामुख डोल प्रसाद आर्याल आज शिष्टाचार भेंट वार्ता कलन अछि। राष्ट्रपति भवन में भेल भेंट के क्रम में सभामुख आर्याल अंतर व्यवस्थापिका संग आईपीयू के 153वां महासभा में सहभागी होबा लेल स्वयं रवि दिन प्रस्थान करय लागल जानकारी राष्ट्रपति के करौने छलथि। भेंट में आईईपीयू महासभा में नेपाल के सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व के विषय में सेहो विचार विमर्श भेल सभामुख के सचिवालय जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक सँ विभिन्न 7 विधेयक संबंधित समिति में दफावार विचार विमर्श के लेल पठाओल जाके प्रस्ताव पारित भेल अछि। बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुभिता गौतम किछ नेपाल एन के व्यवस्था जगवाक विधेयक 2083 आ राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2083 के दफावार विचार विमर्श के लेल संबंधित समिति में पटाल जा कहि कर प्रस्ताव प्रस्तुत कलन। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लमसाल फोहर महिला व्यवस्थापन विधेयक 2083 के दफावार विचार विमर्श के लेल संबंधित समिति में पठाल जा कहि कर प्रस्ताव कलन। महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आ सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आ सामाजिक सुरक्षा संबंधी किछ नेपाल ऐन संशोधन करय वाला विधेयक 2083 के दफावार विचार विमर्श के लेल संबंधित समिति में पठाएल जा कहि कर प्रस्ताव कलन। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता मैं आमा को दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वितरण नियन्त्रण पहिल संशोधन विधेयक 2083 सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पहिल संशोधन विधेयक 2083 स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था को सुरक्षा संबंधी दोसर संशोधन विधेयक 2083 आ राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक 2083 के दफावार विचार विमर्श के लेल संबंधित समिति में पठाएल जा कहि कर प्रस्ताव प्रस्तुत कलन। बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के दिशा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री गौतम राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के 8वां वार्षिक प्रतिवेदन 2083 पेश कलन। बैठक में सभा में प्रस्तुत होब नहीं सकल मौखिक आ लिखित प्रश्न के उत्तर संबंधित मंत्री टेबुल कलन। बैठक में सभामुख डोल प्रसाद आर्याल प्रतिनिधि सभा नियमावली 2083 हिसाबे विविध कारण से 10 वा ओसे अधिक बैठक में अनुपस्थित सांसद सब से प्राप्त अनुपस्थिति के सूचना सभा के स्वीकृति के लेल पेश कलन। बैठक के अंत में चालू अधिवेशन में भेल काज के संबंध में सभामुख आर्याल विवरण प्रस्तुत कलन। राष्ट्रसभा के आजुक बैठक में सांसद सब हवाई यात्रु के सुरक्षित भरोसेगर गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध कराव तथा दुर्घटना उड़ान स्थगन आ यात्रा अवरोध से यात्रु तथा तेसर पक्ष में पहुंचल क्षति के दायित्व सुनिश्चित करवाक लेल आंतरिक वायु सेवा दायित्व संबंधी विधेयक 2083 कार्यान्वयन में आनबाक चाही पर जोर दलन अछि। बैठक में विषय विधेयक ऊपर के विचार विमर्श में भाग लेत सांसद खम बहादुर खाती आंतरिक वायुसेवा के सुरक्षित भरोसगर गुणस्तरीय तथा जिम्मेवार बनाब विधेयक महत्वपूर्ण रहल बतौलन। हवाई यात्रु के अधिकार संरक्षण करे दुर्घटना से होबे वाला चोटपटक अंग भंग तथा मृत्यु आ उड़ान निलंबन व यात्रा स्थान के कारण
यात्रु माल सामान तथा अन्य पक्ष में पहुँच सकबाक क्षति संबंधी कानूनी व्यवस्था करबाक लेल विधेयक आनल गेल बतौलन। सांसद राम कुमारी झाकरी कानून के भावना से कार्यान्वयन योग्य बनेबाक चाही बतौलन। वायु सेवा कंपनी के जिम्मेवार बनाकर यात्रु के सुरक्षा के प्रत्याभूति करब आवश्यक रहल हुनकर कहब छलन। सांसद विष्णु बहादुर विश्वकर्मा हवाई सेवा में गर्भवती बाल बालिका अपंगता भेल व्यक्ति विपन्न असहाय के लिए प्राथमिकता देल जेबाक विषय विधेयक में समेटल गेल बतौलन। व्यापक विचार विमर्श पश्चात विधेयक आयल चर्च करैत ओहि के पारित करबाक लेल आग्रह कयलन। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लमसाल विद्यमान कानून सुधार मार्फत विकास आ लगानी के वातावरण बनाब सरकार लागल बतौलने। मंत्रालय आयोजना केने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन 2026 संबंधी लगानी आ विकासक लेल कानूनी

भेल छथि। भरतपुर अस्पताल विकास समिति के अध्यक्ष में क्षितिज पौडेल तथा सदस्य में नवराज तमिल सिन्हा, अनिता खड़का नियुक्त भेल छथि। अहिना बांके के सुशील कोराला, प्रखर कैंसर अस्पताल विकास समिति के अध्यक्ष में भीमकांत लामी छाने तथा सदस्य में मधु निपानी आ संजय पांडे नियुक्ति भेल छथि। नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्य सब आय मंत्री मेहता समक्ष पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कयलनि। नवनियुक्त पदाधिकारी संबंधित संस्था तथा अस्पताल के व्यवस्थापन, सेवा विस्तार आ सेवा प्रवाह के थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा नागरिक मैत्री बनाबा आवश्यक भूमिका निर्वाह कर से अपेक्षा कयल गेल अछि। नेपाल सरकार के संघीय कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी माटिक उर्वरा शक्ति जोगावा आ कृषि उत्पादन के टिकाऊ बनावा किसान जैविक तथा प्रांगणिक खाद के उपयोग बढ़ावा चाहिए बतौलन। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अनुदानित मल वितरण सूचना प्रणाली संबंधी अभिमुखीकरण कार्यक्रम में ओ रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग से माटि के गुणस्तर में असर पड़ला से माटि के सुधार के लिए प्राथमिकता में राखि कर कृषि नीति आ कार्यक्रम आगू बढ़ायल जात से ओ बतौलन। बीतल समय में प्राकृतिक विनाश के कारण से जलवायु में आए परिवर्तन से धनजन के क्षति के ध्यान में रखते प्राकृतिक संरक्षण के संदेश सहित आज जनकपुर धाम से अंतर्राष्ट्रीय साइकिल यात्रा शुरू भेल। भारत के पर्यावरण संरक्षण अभियानी डॉक्टर अनिल प्रसाद जोशी के अगुवाई तथा कमला जलाधार संरक्षण अभियान, कमला बचाओ अभियान के संयोजन में शुरू भेल साइकिल यात्रा के यात्री सब के जानकी मंदिर के परिसर में मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र लाभ कर्ण विदाई कने छले। हिंदू सब के महान पावन दशमी, दीपावली आ छठ पर्व के लक्षित कर धमसा जिला में विशेष सुरक्षा नीति अवलंबन करत 1211 प्रहरी परिचालन कयल जात। जिला प्रहरी कार्यालय धमसा आयोजना कने पत्रकार सम्मेलन में जनकपुर में दशमी, दीपावली आ छठ पर्व में विशेष भीड़ भाड़ भेला के कारण आम जनता के सुरक्षित सहित पर्व मनाब में सुकून के संग मनाबे अ के लिए अ संख्या में प्रहरी परिचालन कर लागल जनौलन। धनसा प्रहरी उपरीक्षक रूपेश खड़का पावन तिहार के लक्षित करे 70 प्रहरी के पिकेट राख के 46 पैदल गश्ती परिचालन कर के 7 बाजार अनुगमन टोली परिचालन करबाक आ 7 स्वीप ऑपरेशन टोली परिचालन करबाक, विपद प्रतिकारी आ गाड़ी मोबाइल टोली परिचालन के तैयारी कयल गेल जानकारी दिलन। जानकी मंदिर के यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक संपदा सूची में सूचीकृत करबाक तैयारी संगे मंदिर आ लगपास के ऐतिहासिक तथा धार्मिक संपदा के पहचान, अभिलेखीकरण आ संरक्षण के व्यवस्थित बनेबाक पहल कयल गेल। नेपाल सरकार के गत भादो 13 गते बैसल मंत्री परिषद बैठक से जानकी मंदिर सहित के क्षेत्र के सरकार संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा कैलाक बाद एक प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता में रखते विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ाव लागल। बुध दिन जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका बजौने बैठक में सरकार वाला मंदिर सहित के क्षेत्र के संरक्षित स्मारक क्षेत्र के रूप में प्रभावकारी बनबत, जानकी मंदिर के ऐतिहासिक तथा धार्मिक पहचान के थप स्थापित कर संरक्षण संवर्धन आ विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करबाक प्रक्रिया के आगू बढ़ायल जेबाक विषय में आवश्यक पहल करबाक निर्णय कैलक। अब खेल समाचार। ओमान में आयोजन हो वाला आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट श्रृंखला 2 के लिए नेपाल क्रिकेट संघ आई 15 सदस्य टोली की घोषणा कैलक। आसीन 21 गति से शुरू हो वाला विश्वकप क्रिकेट लीग 2 में आयोजक ओमान संगे नेपाल आ कैनेडा प्रतिस्पर्धा करत। इस श्रृंखला के लिए क्यान संदीप लामिछाने के कप्तानी में 15 सदस्य टोली घोषणा कने क्यान द्वारा आई जारी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

नेपाल, नया नेपाल को समावेशी आवाज राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्र को संचार।